सोलु गोपाल सकलो हरि नाम गोविंद महाकपु हायु निंजो थमुइदा मागी प्रेम तबुंगाई जो हरे कृष्ण हरे गोविंदा।

मखल मथिलगी धौरम सिंह लेप्तन संदुक चरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजेक लांथोक चरी लेबा पुखरम जबा इसई सिंह मथंग मथंग वेना कदो गे अहन बदल लबिरसी पुखरम बम चंद्र कुमार की खोंजलदा मुतुवा तोम बन सेरिंगबा लेबा पुखरम जबा इसई लाउरसी ngasi degi ekoi amatani

0: lauk thuk saba ama raise gi social welfare department na how for empowerment of women gi makha de lawgadori ba contractual staff sing gi aiba sangeng tha asi gi kunmari de pangthok lagani sangeng asi imphal jp women's college imphal college maharaja bodhachandra college cc higher secondary wangkhai high school surasanpur gi surasanpur college amasung senapati gi saint anthony college da pangthok kani high riba center sing asi da akhanaba posting gi aiba sangeng sing ayuk amadi nimit ngwa matung da akhanna na pangthok kani candidate singna examination center da sangyang hawadaba pung amagi mamang da masagi admit card amadi mari leinaba identity khangdokpa document sing paiduna yorkadabani akupa marol department asi website www.socialwelfare.mn.gov.in dagi khangbaya gani
1: tabiriba pawasi akashbani imphal dagini लेबाग सिदा पेट्रोलियम की पोलम सिंह फंगलोई हाइबगी मिपाइलिंगाई लेते ऑयल पंप सिंगदा थाउ मरांग काइन फंगली हाइना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड न फोंथोरगली सोशल मीडिया द थागलक पवारोल मदा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड न हाई ऑयल पंप सिंगदा थाउ पिबगी थाबक हानगुम मखासा थरी सांग ककथरग पिबगी वाफम लेते हंदक थाउ फंगनदबगी अवाब खर लेखी बादु लौ सिंगुगी मतम होइबना डीजल थाउ हेन सीजन नरकबदगिनी मियामना थाउ फंगलोय हाइबगी वाखलोंदा दरकार लेब सांगदगी हेन थाउ लेसिन बिगनु मियामगी दरकार लेब थाउगी सांग अदुमक वातन पिगिनी हाइना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड न फोंदोरगली आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल द नुपी महिरोय मा इजत महंगलब मतुंग हार्ट खिबगी वाथोक निंथिने थिगनबा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम म सेमले सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एस्टर्न जोन की जॉइंट डायरेक्टर ने लुसिंग मई अहम साब मिहुट कांगना थौदोंथी थीगलगनी रिपोर्ट मतंग था कुमा फाउद पीखलब कलकत्ता हाईकोर्ट खगनख्रे इमुंग मनुंग की मयोयसिंगना थौदोक अदु निंथिनि टिकेट पीनबा कयारक हन हाइजरकपदगी कोर्ट वारेबसि लौखिबनी थौदोक अदुगा मरी लिनना असुंबा लंगला लंगजिल कया नमसिनदुना मदि नाथैदुना थंबिरि हाइना लैखिद्रबि महिरोय अदुगी इमुंग मनुंगना कोर्टता वाकलखिबनी भारत अमसुंग इजिप्त लेबाक अनिना टेरोरिज्म थेंगनबदा तेंबांग पीननबा अमत ओइना वारेब लोंनाख्रे टेरोरिज्म थेंगनबगी मतांगदा नई दिल्ली दंगरांग पांथोखिबा जॉइन वर्किंग ग्रुप की मंगासुब मिफमना वारेबसि लौखिबनी हौकिबा सहीगी एप्रिल थादा जम्मू काश्मीर की पहलगामदा टेरोरिस्टिंग ने सथरखिबा एटेकता मियोय किया सेनखिबगी थौदोक अदुबु लेबाक अनिना कन्ना निंदा तौखि टेरोरिज्म थेंगनबदा भारत ने लौखलप थाबक थोरम खुदिंगमक्त इजिप्त ना पांगबा याबा मतेंग पांगनी हाइनासु थाजब पिखि लेबाक अनिना टेरोरिज्म थेंगनबा याउना तोंगान तोंगानबा थाबक थोरम सिंगदा तेंगबांग पिनिनेबेगी वाफमसु मिफम मदुता कुमन खनेखि नसि फोंबा पाउसे सिंगी मरोइबा पाउ सिंगिदम खौजिक वाहेंगबम सालिनी लेरे सालिनी
2: थागाचरि दिजामनि मणिपुर ने फोंनरीब पाउचे अयाब सिक्योरिटी फोर्सेस यामलब खुसु खुलाई फागतब की पाना मरुब पाइन फोंनरी पाबना लुचिब यू एन एल एफ की कैम्पतेमलब खुसु खुलाई फागतरे कादर मरी सुफारे हाइब पाना पोनफम अहान हेडलाइन होना फोंली मणिपुर की चिंग तम लोन यादव सिंह मधक् सिक्योरीटी उकाय तकदौरीब्रा ईस्टर्न कमान की जी ओ सी इनचार्ज न गवर्नर उन्नख्रे लमदेंदगी खुदसु खुलाई सिंग अमसुंग कादर मरी फागतरे हाइना हुएन लन पाउगी अहान हेडलाइन तौरी पावसी नहारोल की थौदांग सना लेबाग मणिपुर मेल संगा एक्सप्रेस की एडिशन अनिमक्ता तोंगान तोंगान हेडलाइन तौदुना फोंले फाजिनखिब नगा तरुक थादोकनबा मितयेंग चंबियु हाइना यूनाइटेड नगा काउंसिल ना यूनियन होम मिनिस्टर द चे पिसिनख्रे किम की शटडाउन पुंग निफु निपान अमुक सांगथाख्रे हाइब पाउना सना लेबा की अहान हेडलाइन ओरी पावसी पीपल्स क्रॉनिकल अहान हेडलाइन तौरी लोनना मणिपुर मेल तोंगान हेडलाइन पीदुना फोंली मणिपुर टेरोरिज्म की थबक सिंग लेप्तना चथरी सेंटर ना उसिनद्रिबसी अयाब पीरब्रा हाइब कांग्रेस की वाफम ना संगा एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन की अहान हेडलाइन तौरी नगा की मियोय तरुक फाजिंखिबगी मतांगदा किमना अरानब वाफम कया फोंदोक्तुना लेरे हाइबा अनसमना फोंदोखिब वाफम संगा एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन की अहान हेडलाइन तौरी फाजिंखिब नगा मियोय सिंग अथुब मतमदा थादोरकनब दाबी तक्सिनदुना ngarang तमेंगलोंदा मियाम की वापकत मिफम अमा पांगथोख्रे हाइबा पाउ गानफ्यू मेल अहान हेडलाइन तौरी लाखलिब नुमित मंगानी असिदा अवांग नोंपोक लमदमदा अकनब नोंचुरब याय हाइबा मेट डिपार्टमेंट ना फोंदोखिबा Wapamna Taminglong Times ki Maru Oiba Pau oina Pongli. Phajin khiba Nagagi miyoi taru thadorak naba UNC na Home Minister da Taksingkhre haiba pauna Hills Hornbill Express ki ahan be headline oina Pongli. Dijamni.
1: Thagasari Salini. Aroibada Maroiba Pau mu. Lamsang Kendra ki manung sana laiba Akham Salam Mamadi Maglangthong ngasi Mukhyamantri Yumnam Khemsan na miyamda khusinaragani. Manipur da aina yadaba mong da khuzu khulai putuna satpathengra badi police station sing da pau pibina ba Manipur police na apil tauri amasung sarkar na hairi leba ga sida petroleum gi polam sing phangloi haibegi mi pailingai leite pau lai sare

0: आकाशवाणी इम्फाल हाउजेक मणिपुरी दमरुए बपाउ ताबिरसी
1: आकाशवाणी इम्फाल हाउजे पाउबगी मरुए बपाउ दा नजी असी मालेम की बायोडायवर्सिटी नुमित नी नुमित असी का मरी लेना ना मुख्यमंत्री इमरान खेमसाना मणिपुरी म्याम तैयार पाउजेल पीडी मा की पाउजेल दा श्री खेमसाना हाय लाकतुरी बतुंगी मिरोल ना मसामो फन लेनु बगी दम ए कोई पुन होन मिनेसी लेबक असी दा पेट्रोलियम की पथोक सिंग फंगलोय हाय बगी मि पाइनिंग आई लेते ऑयल पंप सिंग दा थाउ मरंग काइनो

लेहाइना इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फोदले रेलवे मंत्री वैष्णव नुमित इनकी खोंचटंग राजस्थान से चटनी खोंचटना जयपुर तुगन तुगानब रेलवे प्रोजेक्ट संगागनी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महरोय इजत मांगलब हाटकी वाथों थीगटनब कोलकाता हाई कोर्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेमले भारत इजिप्त लेबाक अनी टेरोरीजम थेब तेंबं पीनाब वेब लौमे टेरोरीजम थेब की न्यू दिल्ली पाथ्ब जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मांगसूब मीफम वेब अभी मे डिपार्टमें उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश विदर्भ लमदी का हेन साब फीव मायोगनी अवानुपुक लमदम सब हिमालय नोजू बेंगोल खा थम कर्नाटक नोजूरब अहम जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स केस प्राइज इंटर डिस्ट्रिक्ट कबाडी टूर्नामेंट लिंगनी कुंतरुक की मांग सब नुपा की मेट्स इम्फाल ईस्ट न कक्षिंग बो इम्फाल वेस्ट न इम्फाल ईस्ट बो थौबाल विष्णुपुर बो विष्णुपुर न इम्फाल वेस्ट बो थौबाल कक्षिंग बो माइथिब पीख्रे नुपीगीद न इम्फाल वेस्ट न इम्फाल ईस्ट बो विष्णुपुर न थौबाल बो इम्फाल वेस्ट न कक्षिंग बो कक्षिंग न थौबाल बो माइथिब पीख्रे अतुब मेट्स इम्फाल ईस्ट विष्णुपुर ड्रो जटकी इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट सनराइजर्स हैदराबाद का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का हैदराबाद थेगनी मेच नुमिदांग पुंग तरेट मखाइदगी होगनी पाउ लोइजरे।

0: हेलो
1: हेलो
0: हजबीरो
1: हेमा दाइमो नत्रो
0: माने हजबी अने श्याम कुइरे ने पाव फोंग दबा
1: ओ दाइमो याम नुंगाये अदो याम कुइरे को उन दबा
0: होय
1: अदो दाइमो मागी करी पाव लेगे
0: हा
1: अस ngai बसे या वाजा निंगो सुक याम बसे हिसे कर मो हरते मासे थमोई दे खरा कंजाने
0: थमुई कन मनती खांग बकन बा कमिटेड ओइ बा हेरो हायो
1: अदो करी पाव ले रगे यम तानिंगे
0: मेम साहेब ओइरगा एखोई बुदी काउबी खुनु को
1: दाइमो सिदी करी पाव नो बा
0: मास्टर दने दियुगी सेकेंड दारे दना एखोई सार दो ओइ
1: हा ओइ बेरो दाइमो
0: बेनी सिबु फागी या बा पावरो आईएस ट्राई तो ये फंगदबा माले सो हाइरी
1: यम नुंगाये दाइमो अदो अखोय मोरांग दला ओ चा थाक्से
0: लाके लाके लाके दब सुलेर बनी
1: कैनो लाका दब लेर आइबो
0: मालेम गिने इमा गा पाबुंगना मागी खंगना बनु पी लेब रा हंगे इमोंदा अहिना नंगी मरम द सीत ना नाय दोखरे
1: हेमा अस यम काइजे दाइमो अस नंग सिदि यम तल्ले अस यम फरक दाइ दाइमो
0: सिबु फरक लने हा अशिंग बनी कैनो अस अहलनी दुना मुक्तोइबा नंग उनिंग बना गाउरे दना हाइ लेर बनी कमाई तो सीगे मेम साहेब
1: दाइमो दाइमो अस अस दाइमो से
0: मालेम दो आईएस लोर के दिसंबर मिडल द थौरा आनी मा थोलक त्रिंगाई दा अहल नि दो पुरगा आइना चा थक बला आनी यानिंग द्रबो मेम साहेब
1: यानिंगे दाइमो।

0: हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून
1: हेलो मैडम
0: तराम नक्चरी
1: मैडम तराम बुक्चरी
0: होय आई खोंजे से फजना ताबी को सेंगना ताई
1: सो मुंग गेतगी
0: होय होय सो मुंग गेतगी
1: नंबर ngam mini meda नंबर ngam bi
0: मरु ngam bi तराम नक्चरी खोय गिस माइना गुड आफ्टरनून लेडीज की थौरम से देसी द करी करम बो फम फोंगदुक पी के हाइदना सरुग्या बिरक बनो
1: मैडम का यूट्यूब पर जो कोई नल्ले पर मतुम दस माह तक तो बजाम नहीं आई जगह मैडम
0: है है कोई नल्ले पर अब मतुम दा अमुक थावरम से देश दा मैं आम की अवान नहीं फंडोक पगी थावरम से मुका संतोर पसे दा नहीं भी फंडोक पिनिंग दा कॉल तो बिरक पने बको
1: तबियत
0: रखनी मैडम है मरुगन बी द
1: सप्ताह मेरा मतलब ये है आप बोलते हैं लोग बकुंग तारा मकाई तारा बोलते हैं ताई बको
0: अदो करम करम बात हो रहा है सेना का दी करम करम बात हो रहा है सेना का दी है ना ताबी के
1: मेरा लीला ताई शाही ताई लोई ताई दया मना मिला
0: होय होय गुड आफ्टरनून डैडीज की थौरम से दस मायना मरुप मपांग मया ममना फजबो वफ मया मम पुखत लगतना फोंदो पिरक पसे दति खरी फौवी बगे
1: याम नुंगाय मेरा
0: होय होय याम नुंगाय हैबी बने दुगा काना बसिंग अदुम लोक्सन बिको
1: लोक्सन बिने मेरा
0: होय होय कॉल तो पिरक तना थौरम से दस रुग या बिरक प सवम बोंग थोंग खोंग दगी सवम मुंगे दगी मरुप गान बिबुस थागा चरी एतो प कॉलर मम लखचगे थगचरी

0: हेलो हेलो गुड आफ्टरनून तराम नोक चरी मिंग ले फम हाई बीयू
1: थियाम मंगा पोपी देखी
0: मेमा मरुप मेमा कोई आकाशवाणी इंफाल की थोरम से दस हरु के अभिरक्त का यार अक्षुर रखे
1: ठीक लेडीज की शिवर आई थी मेडम
0: Hoi, good afternoon, ladies. Ki thawram da duga agaswan infal gi tongan tongan ba isai khan ba gi thawram sing da mamang da saru gya bi rakhi base kaya amuk ka di shu bi rakhe. Hoi, hoi. Good afternoon, ladies. Ki da di masing kaya rak ka di shu bi rakhe. Masing thi ba ngam bi re bro. अमुक था भाई यानी यार वही है बदुदी कोई ऑफिशियल सिंग में आम का खाना रगा मदुदी लेप का दबाव ही बनी ना दुगा सुमाई ना अमुक खाना ताज़ा निंगी है वैसे कोई मनी मलादा ईमेल की खुदांग दाना जगह जिथे हूँ भाई बिरागा दी है ना सुनूं आई जा दोइने बा
1: advertise
0: tau bagi matang sedai sta marup me mana call ring jat pasiga matang janaru bo iram basiyai ado marup me made khoi gi thoram sing da toina saru gya bi ba marup ma sane duga hauji phau bada radio gi thoram sing thawai aung na tazara ga phone se muktang phangjara badi haidana ngai ba marup sing me ama ma sulai ribani mayam duga yingna ruraga di marup hoi di yamna lai ba phaba singi manung da ama di oi doine ba ko hai अदरे अतोप करी करी वाफम सिंह फोंग दुपी का दबल आईरी
1: ओदो मले जतरे आई इशाई दिदांग थांग जदर जोगी थवा याम नो आई तबा आई तारे दगे रिंग चले सुसा का का पिर तब दो
0: होय होय नोंग मदी सोई दना फंग बा ओइ रसनु हाय बा वाफम सिसु थाम जरी अदु मतुंग तारक पा थोरम सिंह द लेप तना दुम सरु ग्या बियो दुगा सरु से लेप तना सुम यार ग दि दोंग मदी नुमित तो लाख तोइने बगो होय होय अदु दि अतोप कलर अमादा मुक चांस पिजा के थोरम से दा सरु ग्या बिरक पा थागा चरी
1: करिनेगा

दोस्तों आज शुक्रवार है और हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। दोस्तों सकारात्मक सोच के साथ की गई दिन की शुरुआत आपको हर लक्ष्य तक पहुंचाने की शक्ति देती है। खुद पर विश्वास रखें, सब अच्छा होता है। और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म जब वी मेट से, मोहित चौहान की आवाज़ में। इस गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

दोस्तों वर्ष 2010 की एक बहुत ही लोकप्रिय और रोमांटिक गीत है फिल्म काइट्स का। ये खूबसूरत गीत प्रसिद्ध गायक के ने अपनी जादुई आवाज़ में गाया है। इसका संगीत राजेश रोशन द्वारा रचित है और बोल नासिर फराज ने लिखे हैं और ये गीत फिल्माया गया है ऋतिक रोशन और बराबर मौरी पर। तो सुनते हैं ये गीत। ये गीत है प्यार के एहसास, भावनाओं के उतार चढ़ाव और दिल की धड़कनों को बयां करता है। तो सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना प्रीतम के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म किस्मत कनेक्शन से ये गीत आतिफ असलम और अलका याग्निक के युगल स्वर में। इस गीत के बोल लिखे थे सैयद कादरी ने। और अब सुनते हैं अगला गीत सफाकत अमानत अली और सुनिधि चौहान के युगल स्वर में। आई हेट लव स्टोरीज फिल्म से ये गीत बोल विशाल डडलानी के हैं और संगीत विशाल शेखर का।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल पर फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत के बोल को फिल्म केदारनाथ में आशीष कौर की आवाज़ में संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। दोपहर 2:30 बजे फिर आपसे कंगला चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक अपने रेडियो दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: ꯕ ꯂꯣꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 18 ꯁꯨꯔꯕꯗꯤ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯆꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯥ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯤꯒꯁꯨ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯆꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ
1: ꯅꯣ ꯅꯣ ꯅꯣ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯪꯖꯕ ꯑꯃꯅꯤꯕꯨ
0: ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯇꯧꯍꯩꯕ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ
0: ꯑꯣ
1: ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯆꯍꯤ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯔꯜ ꯃꯊꯨꯝ ꯁꯝꯄꯇꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯣꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯛꯇꯤꯅꯦ ꯃꯤꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤꯗꯣ
0: ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯃꯇꯥꯡ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯦ ꯁꯨꯅꯃꯛꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯕ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯉꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯌꯥꯔꯝ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯗ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯦꯔꯤꯁ ꯑꯦꯛ 1955ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤ
0: ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯃꯛꯇꯤ ꯊꯦꯡꯅꯖꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯨꯈ꯭ꯔꯥꯕꯤ ꯃꯧꯅꯥꯁꯤꯡ ꯃꯌꯨꯝ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯁꯨ ꯄꯪꯌꯥꯎꯃ ꯌꯥꯎꯅꯔꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯋꯥ ꯌꯥꯝꯅꯗ꯭ꯔꯤꯕꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯥꯏꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯅꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩ ꯍꯤꯟꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯌꯦꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯧꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯁꯥ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯖꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏ
1: ꯑꯗꯨꯅꯤꯕꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯅꯦ ꯃꯗꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯍꯦꯛ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟ ꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯅꯦ ꯃꯀꯨꯅ ꯇꯨꯍꯠꯄꯤꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯇꯣꯔꯆꯔ ꯇꯧꯕ ꯀꯀꯥꯁꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗꯣꯃꯦꯁꯇꯤꯛ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ 2005ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯔꯨꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯗꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ
2: ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯣ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯔꯤꯖꯥꯠꯅꯤꯗꯅ
1: ꯍꯣꯏꯅꯦ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯨꯡꯕꯤ ꯅꯨꯡꯂꯦꯛꯀꯨꯝꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ 21 ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ 19 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 20 ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯆꯥꯗ ꯆꯠꯅꯔꯝꯕ ꯂꯣ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯨꯅꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏꯗꯅ
0: ꯃꯥꯅꯦ ꯇꯥꯃꯣ
1: ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯗ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯒ ꯁꯨꯅꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕꯅꯤ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯦꯠ ꯍꯦꯛ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ
2: ꯑꯣ ꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯂꯣꯕꯨ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨꯗꯤ ꯂꯣꯅ ꯀꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯖꯥꯠꯂ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ
1: ꯀꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯊꯥꯖꯃꯥꯟꯕꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯅꯤꯅꯦ ꯕꯤꯅ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯂꯣ ꯏꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯔꯜ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗꯅ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨ ꯁꯣꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯕꯨꯁꯨ ꯂꯣꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯙꯤꯀꯥꯔ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯩꯉꯥꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯕꯤꯅ
0: ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯥꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟꯁꯤꯗ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯀꯔꯣꯔꯄꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤ
1: ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯗꯨꯃꯛꯅꯤꯕꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯕꯨ ꯊꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯈꯪꯅ ꯃꯣꯡꯐꯝ ꯊꯤꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗꯣ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨꯅꯦ लनाई मिवई अमना नत्रगा खरना लो तेम सिंगनब यादरगा सु करीगुंब लो अमना मियाम की महोक्षा की पुनसीदा अवाब पीरब मियाम ने मधु की मयोक्त इहो हो बया खुद मोयना इंडिया दा ब्रिटिश ना पालिंगे दा ब्रिटिश ना सेमलकबा थुमगी लो हाइबडी सोल्ट लो की मयोक्ता महात्मा गांधी जी ने लूसिंग दना मियाम ना हो की बया इहो खोंक्षत जंदी मार्स साबरमती दगिना दिल्ली भाव से खिप दो ब्रिटिश लोग की मायोक्ता हाँ अदुनी बो
2: ए अदुबुदी तमो ब्रिटिश की रोलाट एक ऑफ 1919 यानिंग दे है दना चाही दुगी अप्रैल तरह हम दो इधा मियाम हाउरक तना अमृतसर की जलियान वाला बाग ता अच्छा उप मिपम पाऊंगी मधुदा जनरल डायर ना सिपाही खुदपुर में थाजिल लगा नो मेकअप सिंकी मियो इचा कया मसीकी अदुबु तमो ब्रिटिश ने शु मखोई नंगम दबे याद दे मतागुम आर्बिटरी लो कया पास तो खरीब दुनी खुदा मोइना सेडिशन एक 1870 सेम दना ब्रिटिश गवर्नमेंट के मायोक ता हेक वांगालक पखुदिंग हेक ता फाब याय हाय खरीब दुदी
1: मधु नने लोई लम लेंगा की लो बाय एनी मीन्स मखोई ने खुदुम चंदुना लेंगा की बल लम की मियाम बुनम थना ना बा ओट नहीं बा याना ना बा सेम बा लो नी दना होजी की दी निंग तमलबा डेमोक्रेटिक इंडिया की लोन तो तब मशीद फाव मियाम ने पेंद रगती पुन्न पेंद बगी इहो हो बे याय यानिंग द्री बदो मयक सेंग न पुंडो पे याय हाय बनीता सुन मग तबु मणिपुर दसु निशाबन इमाय वेल सिंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन कयाम ना फॉरेन लिकर योन बे यारो ये हाय दना अकन बे इहो हो की तो मददई दी कहते हुए मणिपुर गबन मैं ना मणिपुर दा the act of prohibition chanandana manipur da license pai duna hanglamba yungang gi dukan sing thing kribadun
2: wari budi yam nungai ri tamo ado tamo ai gi sina karma hin tong tari ba ina ma yai ma khoi gi wakhandana nupa mayum su phau jeng hap ta ba imung na te lohong bada un pot kok thong ma pun khre aduna ai gi lopham saru pining da ba piroi sini ma khoi na khali si
0: Tamo, ayi di pirak terasu kau sukai dia nak kali betul.
2: To, mak gidi asini. Pirak terasu ya leh, hai bagi ro. Aku ini nak tamo gimana tak lagi sih buah.
0: Asnang sih mak.
1: Ngai ko, ayi bab tar. Ko, noy ni si ayi bab tar. To mal gisi so, hai bagi abuani. Aduka, thajaman bi, nang gitu so, hai pam thukpan. Yani, ayang gimati yang low bayani dah. Tamu lady sini.
2: Aduh ni tamu.
1: Aduh wah mati lain hebel.
2: Kari.
0: Hebel tam.
1: Case hai sini. Nakal lani mak. CND iting ting do bahai dia. Acian basu atan basu. Wamin na bahai do. Aduh na nang na angang itu orang ni nene. Aruoi boi na. Nabung hal ibu sobudu da amuk tengga hai rusoh. Maduda, yarak terenda na, aingi hau na bih cakap tar. Hari ini ko ngasi gitu, yowurone noya niya. Apa amu lelaga pau phone si? Ya bu yadre. Hey, masih, ayi woi bay, hai ramni ko. Antai naga hai rakat bawa nanti hey, si masih kau nu, yowurone noya niya.
2: Kurun jari tau.
1: Ah, yare.
0: Kurun jari tau.
1: Yare.

हे सिनाई द्रव सही गी सही बा हे लोनाई द्रव सरेंगी सरेंग बा आई लू तोंग थवाई हकचांग पुंबा मेकुप अमगी मनुंग नंगी सही ततिन कदे नंगी सही ना आई बु ये सलाई गी खूर अब मियेंग

0: Un maguabo. Dizi piras mani nostra ma. Que no.
1: Yama.
0: Que no.
1: És primer zau la e.
0: Mera zau. Tazelo. Tazelo.
1: Fani yama.
0: Espi.
1: Que no yam saule em sibo. Que no mai poca cap tu que no.
0: एसपी साहब की एसपी साहब की करियर नो पाओ
1: आई नशी तो किन्हों मिने पानी मापान सकने
0: कराई था
1: हाँ मशी अखंड ना बने अतुना हाई तो पढ़े नुमाई तो मान रहे
0: ओ एसपी साहब की एसपी साहब की आई मोने कॉन्फिडेंशियल
1: मशी मतांग मतांग है बतानी वालों ने बियाद रहे
0: ओ
1: अतु आई ना है कि बतो वो
0: यस आई थोरांग पुनो मुख्यम साबल हो जाए
1: कन्वा या मग कार के टेबल में थकता है फिर कैसे पुथोक पिरो
0: एसपी हौजिक पावा डीजीपी ने को या पा मथोक पैकेट पे मरम करी ना
1: महाग लमद मसी की मिनी लमद मसी द लई रेबल अलालो सिंगबो मान मस थिन खंगे
0: अदु दे महाग न एब उसित बने है बेसे मय एक सेंगे आई की ग्रुप असे हौजे हौजिक लेबा कस द खुलाई पाइब सिंग की मनंगा अकन म फोर्स मने है बेसे महाग न खंग मंगम द बदे महाग न पाइर व फम मदो मशान खंग न थादुक छ बयारे
1: ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स नंगम सोगल ओके अदु वो ओ
0: हे स्लिप मसे लोपा लात्रा मंगागी पैक सुन यार बने
1: ओके ओके अदु दे
0: असाय पबु थिन ओके
1: यानी यानी लेबी होरो
0: मेरा जाओ एसपी साहब अदोम एकोई हिरम खुदी मकते कोई साना जरब मरु ने असब उठन दुखे
1: आ फनी फले अदु तो
0: करी
1: वफम ममना
0: हाय बियो
1: चब चब नुमिन मकते हाय बंगम रे
0: करी करी बो
1: डॉक्टर श्याम कुमार की मपा
0: करी डॉक्टर श्याम कुमार डॉक्टर श्याम कुमार की मपा
1: हेरा मिनिस्टर थोइबी
0: ओ करी बो
1: मा की मसान पर डॉक्टर श्याम कुमार सी डीजीपी राजमनी की मसानपी शकुंतला का लोइना ना लोहंग खोंगदों बगी थारो मम पाक्तों ना बगी अदु वो शकुंतला मसा के आया भयाग देना लोहंग बसी यादा बतागी डॉक्टर श्याम कुमार मटे शकुंतला मकोई नहीं तो उन्हंदर वाड़ी छाना बगी प्रोग्राम में दिले
0: यस अदु नो बवा फम दी एसपी साहब ने करम खंगुरी बा
1: हां एकोई ऑफिस की थाबो कोम लोकम तमदा एकोई मसन वाड़ी छाना बदा डीजीपी मते एकोई वाड़ी छाना बदा खंगमने
0: ओ कदाई दा कैदों गे
1: मसी चप चाब नुमी ते हाइबंगम जते अदु वो अंगांग सिंह तो कुप न सेने हलगदी चप चाब नुमी खंगने
0: गुड
1: आई मोटे दी शकुंतला वो फजल लगा नंगी कस्ता दी ऐसी तो थम लगा नंगी थबक चा थरबदी नंगी माई पकड़ रखा
0: राइट
1: सब न हाय बदा लेबा असिदा सरकार असिदा मथायर में सागदा बा एनी मिनिस्टर फाइनेंस सेक्रेटरी असको म मिशा म फजल लगा नंगी कस्ता दी थम लगा नंगी थबक चा थरबदी माई पकड़ रहने का
0: गुड गुड शकुंतला नत्रगना राजमणि नचंगने देवला अहम सिगी मनुंडा मा आई कष्ट दे इस तथा मगदे
1: अट कम दो अ
0: मखोई की फैमिली दा देवला भो ओरे न तरक शकुंतला भो ओरे आई कष्ट दे इस तथा मगदे आई अनिंग बा अपाम खुद मक लाइन लाइन पंक पंग मगदे गुड आप हमें इनफॉरमेशन करा पीपी ने मगी दमक अदों बा अमुक कहने थक चली अमुक कहने थक चली
1: अदों दे आई यमनब तो गए
0: फनी शकुंतला नचकन देवला नचकन डीजीपी अरे वाबो कैसे लेते हो मागो मन उसी त्रवा अकन शकुंतला नचकन देवला नचकन डीजीपी अरे वाबो कैसे लेते हो मागो मन उसी त्रवा अकन बा
2: यंबा
0: सरेन
1: तभी यंबा
0: एक और की वापम बताओ इधर ऑफिसर सीधा पंपम थोक पर दंडी करी ना
1: अग पसेरा न त्रगा अखा कराऊ न गंदुना ताइबुन सिंचन लोहिन बने यंबा
0: गुड गुड नंदी नंदी
2: हॉट बो हॉट बो हॉट बो
0: यस यस आई मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट के टैक्स टैक्स टैक्स नंबर पियन करे मधु की धमक डीजीपी राजमणि ने थोड़ा सिंह मंगम रबते महा की मटक अखा कराओ नंगन के दबने मशे आई का ऑर्डर ने डी डीजीपी।

0: डीजीपी नत्रगना मा के मसानु पे शकुंतला अहुम सिंह की मनुंग दामा एकोई कास्ता दीसी द पोर कदमने मधु की दमक नंगी मरुप अकन्बा अमरे ला नहीं सिंह बलामी लोई नखी दमने अपाम बलामी पुखो अपाम खुलाई पुखो अदुगा नसागी नथोड़ी पंथुक तो यार होई
1: यांबा
0: कैनो
1: थोड़ा अंकुटिंग बग ओए चुके द मोंग द पंथुक पुन फगड़ खली
0: कैनो
1: यांबा डीजीपी आईबीसी मिसम नते अकन नब खुलाई पाईबीसी कुटी गार्ड ना मार्किस चटुक चचिंदा नाक शेल बने अडुगी समतक त लमदम मसीगी स्टेटस की पुलिस फोर्स की मकोक तोमम सोइरिम नियाबा कोइद कुदों थिबोग नियाबा
0: कनबा
1: यांबा
0: ऐ हाक अने खन वा गांग दे लमदम सिगे लाइवे खरब इपाई पुसिंग ना अने खन वा गांग बस न रखते अंगांग सिंगसे ऐ की वा दांग न कुंबा यगले ऐ हाक कना न कंगन न बया दे लमदम सिदा इमिंग ट टॉप द मियाम न टक टक निक निरबो शानोंग बाई वा इन न बमियो यमता ऐ हाक ने हेली मकई ताइबंग पार से हिन खक्तम होय
2: सरेन
3: तपियो याबा
0: नहा के पंथो कर बसिंथा करिना
3: पार्टी की वाफम बुथ होय देबे सिंदा अखा गाउ नंगन बा अमरे लाइनिंग पक्स लेरी बमा पा मपु सिंग उनन न बलम बि शान बियो ने याबा
0: गुड
4: ताबिरी सुमांग लीला विदाई द साप लीला सिगी आहन बसरु लीला सनवी की बा इंफाल यात्रा कम ड्रामा एसोसिएशन की लीला कांगु मकल मथल की थरुम क्या संदोक तुन तान जरी बासी आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हुजी मुक्तामी नसी निंगोंबम जवाहरलाल ना खोंबा बासी

आपका स्वागत है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, रात की इस नरम चादर में जब दिन की भागदौड़ थोड़ी सी थम जाती है और ख्याल धीरे धीरे यादों का दामन थाम लेते हैं, ऐसे ही एक खूबसूरत सफर में हम आपके साथ रहते हैं। मैं हूं आज आपका हमसफर, आपका दोस्त शमीम खान, और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हर सिंगार, जहां बातें होंगी पुराने दिनों की, महकती यादों की और कुछ अनकहे एहसासों की, थोड़ी सी मोहब्बत और बहुत सारी सकारात्मक सोच की। वो तो कहते हैं ना कि कुछ यादें उम्र नहीं पूछती, बस एक धुन सुनते ही लौट आती हैं। तो चलिए आज की इस शाम को थोड़ा और खूबसूरत बनाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों कुछ गीत गीत नहीं होते, जैसे पुरानी डायरी में रखा हुआ गुलाब जिसकी खुशबू वक्त के साथ भी फीकी नहीं पड़ती। दोस्तों जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, कभी तेज रफ्तार तो कभी ठहरी हुई, मगर हर मोड़ पर कोई ना कोई खूबसूरत कहानी छोड़ जाती है। अगर आज का आपका दिन थोड़ा थका देने वाला रहा हो तो बस इतना याद रखिए कि हर शाम अपने साथ एक उम्मीद लेकर आती है कि कल की सुबह शायद कुछ और बेहतर होगी। और अब पेश खिदमत है एक ऐसा गीत जो शायद कभी आपके दिल की खिड़की पर जरूर दस्तक देकर गुजरा होगा।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर

0: सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, क्या कभी आपने गौर किया है कि पुरानी यादों की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? वो हमें पीछे नहीं ले जाती, बल्कि ये एहसास दिलाती हैं कि हमने कितना सुंदर सफर तय किया है। किसी बारिश की शाम, रेडियो पर बजता हुआ कोई गीत, और किसी का मुस्कुरा देना, या किसी का चिट्ठी का इंतजार करना। और मोहब्बत, मोहब्बत हमेशा बड़े बड़े इजहारों में नहीं मिलती, कभी कभी वो चाय के कप में पूछे गए छोटे से सवाल में होती है। ठीक इस गीत की तरह, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हर श्रृंगार और शमीम है अभी आपके साथ। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमें लगता है कि बहुत कुछ पीछे छूट गया है, लेकिन शायद जो मिला है उसकी तरफ देखने का हमें वक्त ही नहीं मिला। एक छोटी सी बात है कि खुश रहने के लिए जिंदगी का परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कभी कभी बस दिल का शुक्रगुजार होना काफी होता है। और अब जो गीत आ रहा है आपके लिए, उसे सुनते हुए शायद आपको किसी की याद जरूर आए, और अगर आए तो बस धीरे से मुस्कुरा दीजिएगा।

मोहब्बत कितना खूबसूरत लफ्ज है ना, लेकिन मोहब्बत सिर्फ किसी से मिलने का नाम नहीं बल्कि कभी कभी किसी की खुशी की दुआ करने का नाम भी होता है। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, जहां सच्चा अपनापन वहीं मिलता है जहां आपको बदल

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित

0: हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: Discussions focused on enhancing cooperation.
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Navneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also call for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defense and security cooperation, Mr. Modi said both countries agreed to further strengthen collaboration in cybersecurity, maritime security and counter-terrorism.
4: Aaj humne cyber security, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे.
3: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan today. She also hosted a banquet in his honor. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill. She said bilateral relations have been elevated to the level of a strategic partnership, which reflects the growing maturity, depth and mutual trust in the India-Cyprus relationship. The government will launch a smart border project and make the entire border with Bangladesh and Pakistan impenetrable. Mr. Shah was addressing the Border Security Force Investiture Ceremony and Rustamji Memorial Lecture in New Delhi today. He said that work is in progress towards creating an impregnable border security grid within the next year by integrating all kinds of technologies under the smart border concept. He said the ministry will soon introduce a smart border project equipped with drones, radars, modern cameras and other advanced technologies. The Home Minister said once this initiative begins, the work of the Border Security Force will become significantly easier and stronger. He emphasized that India must adopt new strategies to address cyber threats, hybrid warfare and drone-based challenges. Short-range ballistic missile Agni-1 was successfully test-launched from the integrated test range at Chandipur, Odisha today. Ministry of Defence said that the launch validated all operational and technical parameters. The test was carried out under the aegis of the Strategic Forces Command. The successful launch marks another milestone in India's strategic defence preparedness and reinforces the credibility of the country's minimum credible deterrence capability. Agni-1 is a short-range surface-to-surface ballistic missile developed indigenously as part of India's strategic missile programme. The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi on 26th of this month. At the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio are arriving in New Delhi to participate in the meeting. The Ministry of External Affairs said in keeping with Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st July last year. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad have set a target of 256 runs for Royal Challengers Bengaluru in Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। तो चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से गीत के साथ जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

0: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात
1: के संग यादों के रंग
2: कभी सुनहरी यादें कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर

दोस्तों कार्यक्रम गीत मेरे मन मीत में आज यहीं तक, फिलहाल वक्त है समाचारों का, मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। साइप्रस के राष्ट्रपति की राजकीय यात्रा पर जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जिनमें 1267 यूएनएससी प्रतिबंध समिति के तहत आने वाले लोग भी शामिल हैं, कड़ी और समन्वित कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा

0: कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। मंत्रालय ने नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन खरीदने की सलाह दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि वन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रात हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट पर 255 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नवनीता अधिकारी। Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said, both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, financing of terrorism and money laundering, as well as to prevent exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, as well as disrupting terrorist networks and combating the financing of terrorism at the United Nations and the Financial Action Task Force. Addressing a joint press conference, Prime Minister Modi said India and Cyprus would work together on connectivity initiatives such as Indo-Pacific Oceans Initiative and the India-Middle East-Europe Economic Corridor. On defence and security cooperation, Mr. Modi said, both countries agreed to further strengthen collaboration in cyber security, maritime security and counter-terrorism.
2: आज हमने cyber security, maritime security और counter-terrorism सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम Indo-Pacific Ocean Initiative और India Middle East Europe Economic Corridor जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: Later, President Draupadi Murmu received Cyprus President Nikos Christodoulidas at Rashtrapati Bhavan yesterday. She also hosted a banquet in his honor. Welcoming President Nikos Christodoulidas and his delegation to India, President Murmu said, India and Cyprus share close relations based on trust and goodwill.

वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ।

दूसरा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कितना प्यारा है ये रात का समा, जब सोचने के लिए कुछ नहीं, बस खामोशी ही खामोशी। कंपेयर किया जाए तो दोपहर से थोड़ी गर्मी भी कम हो गई है और दिल कुछ देर के लिए हर उलझन से आजाद महसूस कर रहा है।

ये वादा रहा फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आरडी बर्मन ने संगीत दिया इन लफ्जों में एक अजीब से अपनेपन की भरी तसल्ली है जैसे बरसों बाद भी कोई रिश्ता दिल में वैसा ही महफूज हो रात की खामोशी में जब ये गीत बजता है तो बीते हुए लम्हे पुरानी मुस्कुराहटें और अधूरी बातें सब धीरे धीरे याद आने लगती हैं

बड़े दिल वाला फिल्म से आपने गाना सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कहीं ना जा, आज कहीं ना जा, दिल के ये लम्हे फिर लौट कर कहाँ आएंगे। बस यूं ही पास बैठे रहो कि खामोशी भी आज कोई मीठा सा गीत लग रही है।

याराना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:35 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

दर्द फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। अहले दिल अक्सर अपने जज्बातों का शोर दुनिया को नहीं सुनाते, वो मुस्कुराहटों के पीछे तकलीफ छुपा लेते हैं और अपने हिस्से का दर्द खामोशी से सह लेते हैं। शायद इसी खामोशी में उनकी मोहब्बत की गहराई और दिल की मजबूती दिखाई देती है।

बंधन फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 43 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म से आपने गाना सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सैंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब केबेबे डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा

आशा भोसले की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एस मोहिंदर ने। शाम की तन्हाइयां में तन्हाइयां हैं, ऐसे में तू आजा सनम। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम खामोशी ओढ़ लेती है तब किसी अपने की कमी और गहरी महसूस होती है। दिल चाहता है कि कोई पास बैठे।

चार दिल और चार राहें फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। कुछ मुलाकातें इतनी कीमती होती हैं कि उनका इंतजार भी अपने आप में एक एहसास बन जाता है। दिल हर आहट पर ठहर जाता है, हर गुजरते पल से यही कहता है कि शायद अब वो सामने आ जाए। मोहब्बत में कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका इंतजार होता है।

जहां आरा फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं

वक्त हुआ है 1:32 और ठीक 43 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

पठान फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। इसे लिखा ऐश कंवल ने और संगीत दिया जिमी ने। जब कोई दिल में गहराई से बस जाता है तो फिर आसपास की दुनिया धीरे धीरे धुंधली लगने लगती है। हर बात, हर रास्ता, हर खामोशी उसी की याद से जुड़ जाती है। इंसान लोगों के बीच रहकर भी कहीं भीतर अकेला हो जाता है, जिसे उसकी सारी दुनिया सिर्फ एक चेहरे के इर्द गिर्द सिमट आई हो।

आसमान फिल्म का गाना आपने सुना सी एच आत्मा की आवाज में. प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने. ये दुनिया भी अजीब है, कभी छोटी सी मोहब्बत को ठुकरा देती है और कभी दिखावे को सर आंखों पर बिठा लेती है. इंसान जितना लोगों को समझने की कोशिश करता है उतना ही उलझता चला जाता है. शायद इसीलिए सुकून अक्सर भीड़ में नहीं अपने ख्यालों और चंद सच्चे रिश्तों में मिलता है.

सगाई फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और तलत की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 30 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

सुहागन फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं एहसासों से बनते हैं। किसी का साथ इतना अजीज होता है कि उसकी मुस्कान में सुकून और उसकी मौजूदगी में पूरी दुनिया नजर आने लगती है। तब मोहब्बत सिर्फ चाहत नहीं रहती, दिल की सबसे खूबसूरत इबादत बन जाती है।

हुआ है 1:55 और ठीक 14 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के

0: बीच आतंक रोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के बेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से निकाल बाहर करने का भी प्रण लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by a killer. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for a strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit of the Cyprus president, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorism financing,

वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ।

इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। सुहानी चांदनी रातें अक्सर दिल को ऐसी बेचैनी दे जाती हैं कि नींद भी आंखों के पास आकर ठहर जाती है। ठंडी हवा, खामोश गलियां और यादों में धुली कोई मीठी सी आवाज रात को और भी लंबा बना देती है। ऐसे लम्हों में इंसान सोना नहीं चाहता, बस उन एहसासों को चुपचाप जीते रहना चाहता है।

अनुरोध फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं कि वक्त गुजर जाने के बाद भी उनकी बातें, उनकी हंसी और उनका एहसास दिल में कहीं ठहर जाता है, और कुछ लोग तो बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। आते हैं, मिलते हैं, फिर धीरे धीरे यादों से उतरते चले जाते हैं। शायद फर्क रिश्तों का नहीं, एहसास की गहराई का होता है।

मोम की गुड़िया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाज में। आनंद बख्शी ने ही इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:30 और ठीक 6 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिल की राहें फिल्म का गाना आपने सुना मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। अपने सुरों को मेरे सुरों में बसा लो, जैसे कोई मीठी धुन धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आवाज का हर एहसास मेरी खामोशियों को भी गीत बना दे और फिर जिंदगी बस एक खूबसूरत सा साज बनकर रह जाए।

चेतना फिल्म का ये गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने।

क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और लता की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, इन शब्दों में जैसे पूरी दुनिया की सादगी और गहराई समाई हुई है। जिंदगी कब किस मोड़ पर बदल जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो पल अपने हों, जिन्हें किसी अपने के साथ महसूस किया जा सके, उन्हें खुलकर जी लेना चाहिए।

अवतार फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हुआ है 2:55 और ठीक 44 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा।

0: देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने क्षेत्रीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। भारत और इथियोपिया ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में इथियोपिया के शामिल होने के लिए द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रोटोकॉल पर WTO में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि डॉक्टर सेंथिल पांडियन सी और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इथियोपिया के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि सेगाब के वेव डाका ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए फिर खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सकी। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड साइप्रस प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit of the Cyprus president, both leaders

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:11 और 10 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब। दोस्तों कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो उसकी खूबसूरती से नहीं बल्कि उसके एहसास से जुड़े होते हैं। इस गीत में मोहब्बत की वो सादगी है जो दिल को बिना शोर किए छू जाती है और ये गीत है एक बेहद खूबसूरत गीत फिल्म राजकुमार से। ये फिल्म आई थी 1964 में तुमने पुकारा और हम चले आए। सिर्फ एक गीत नहीं किसी के लिए बे इंतहा चाहत का एहसास है। जब अपना कोई दिल से पुकारे तो फासले मायने नहीं रखते बस कदम खुद ब खुद चल पड़ते हैं। ये गीत याद दिलाता है कि सच्चा प्यार इंतज़ार नहीं करता बस पुकार सुनकर चला आता है। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते महसूस किए जाते हैं उनमें से ही ये भी नगमा है तुमने पुकारा और हम चले आए। बेहद खूबसूरत है नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में मैं लेकर हाजिर हूँ आपके लिए ख़ास तौर से। तो आइए इसी नगमे के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। बेहद खूबसूरत ये नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफ एम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल में ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। ये गोल्डन एरा के वो नगमे हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं और कोशिश भी यही करते हैं कि ये नगमे हमेशा हमारे दिल में बसे रहें और यूं ही हम भी उसे प्यार करते रहें। ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं और अब आगे बढ़ते हैं हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में अगले नगमे के साथ। और अगला नगमा बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला। कहते हैं कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं नज़रों से शुरू होते हैं, जैसे तुम्हारी आंखों में कोई अपना सा जहां दिखता है, जहां हर खामोशी एक बात कहती है और हर मुस्कान दिल में उतर जाती है। तुम्हारी आंखों में देखना ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ी देर के लिए ठहर गया हो और वो दुनिया की सारी आवाजें बस एक एहसास में बदल गई हों। अगर मोहब्बत का कोई सबसे खूबसूरत पता होता तो शायद वो तुम्हारी आंखें होती, जहां दिल हर बार खोकर भी खुद को पा लेने की कोशिश करता है, बिल्कुल इस नगमे की तरह। और ये नगमा है गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में फिल्म प्यासा से।

हजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस बेहद खूबसूरत महफिल हमराही में। और आज के इस हसीन रात में मैं हूं आपका हमराही, आपका दोस्त, लेकर आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम हमराही, जिसमें गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। ये वो दौर था जब बेहद खूबसूरत नगमे बना करते थे और एक गीत को बनने में कई कई दिन लग जाया करते थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीक इतनी विस्तार से नहीं हम लोगों के दरमियान पहुंचे थे कि हम आज की तरह उन गीतों को तैयार कर पाए। मगर वो ये दौर वो दौर था जिसने हिंदी सिनेमा को बहुत कुछ दिया, सिर्फ गीतों के जरिए ही नहीं बल्कि आम जिंदगी में भी इन गीतों ने बहुत ही अहम किरदार अदा किए। और शायद इसीलिए ये नगमे हमारी जिंदगी से जुड़ गए और इन सब के बीच एक सबसे खूबसूरत एहसास जो हम लोगों के लिए है वो है प्यार मोहब्बत। प्यार शायद वही होता है जब किसी एक इंसान के लिए इंसान खुद को बदलने लगे। तुमसे मिलने के बाद समझ आया कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, किसी की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है। तुम्हारे प्यार में जाने कितने रंग उड़ लिए हमने, कभी बेवजह मुस्कुराना सीखा तो कभी तुम्हारी यादों में घंटों खो जाना। ये दिल भी कितना अजीब है ना, तुम्हारे लिए हर बार कुछ नया बन जाने को चाहता है, बस तुम्हारे करीब रहने की एक छोटी सी वजह के लिए। अगर कोई पूछे मोहब्बत कैसी होती है तो बस इतना ही कहना, किसी एक शख्स के लिए खुद को हर रोज नए अंदाज में पा लेना, वही मोहब्बत है।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

शुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की। और एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस पसंदीदा महफिल में जो आपके दिल के बेहद करीब है और गोल्डन एरा के वो सुनहरे वो खूबसूरत नगमे जो आपके दिल के बेहद करीब है। उन्हीं नगमों में से अगला नगमा एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1966 की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से जिसमें मुख्य किरदार निभाया था विश्वजीत, राजश्री, प्रेम चोपड़ा, रहमान, जैन, राज मेहरा, दुर्गा कोटे, राजेंद्र नाथ, असित सेन वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है रवि साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

सगाई फिल्म का यह नगमा था मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में यह फिल्म आई थी 1966 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था हम सबके बहुत ही प्यारे रवि साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में ऐसा कोई आपकी जिंदगी में मिल जाए जो आपके दिल के इतना करीब हो जाए कि बस सिर्फ आप उसी के बारे में सोचते रहें। शायद ऐसे ही नगमे हैं इस हमराही की महफिल में और आपको जरूर उन पुराने दिनों की याद दिलाएगा। ये ऐसा नगमा है कि कई बार आप उस दौर में चले जाते हैं जब आपकी जिंदगी में भी कोई था। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल में चुपचाप जगह बना लेते हैं, बिना दस्तक दिए, बिना शोर मचाए। तुमसे मिलना भी कुछ ऐसा ही था जैसे किसी अधूरी दुआ को उसका जवाब मिल गया हो। तुम्हारी हंसी में सुकून है, तुम्हारी बातों में अपनापन, और तुम्हारे साथ जैसे हर मौसम थोड़ा और खूबसूरत हो जाता है। कभी सोचा नहीं था कि किसी का होना इतना खास लग सकता है, लेकिन अब दिल हर धड़कन में बस एक ही बात कहता है कि इस भीड़ भरी दुनिया में अगर किसी को चुनना हो तो हर बार सिर्फ तुम्हें चुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रोग्राम हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी ज़रूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ, और ये नगमा है 1967 में आई फिल्म नाइट इन लंदन। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने, और आवाजें हैं लता जी और महेंद्र कपूर साहब की।

0: 90 वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत, संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
1: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
0: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
1: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल हमराही में। और हमराही में आज हूं मैं आपका हमराही, आपका दोस्त, आपके साथ। और उम्मीद करते हैं कि आप भी यूं ही हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ हम भी हाजिर हैं आपके लिए इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। और ये महफिल इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी है कि वो हमें सीधे गोल्डन एरा के उस दौर में लेकर चली जाती है, क्योंकि ये दौर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा था। ये दौर एक ऐसा दौर था जब फिल्में हमारे समाज का आईना हुआ करती थी और फिल्में ऐसा प्रभाव डालती थी समाज पर कि बस सब कुछ ऐसा लगता था कि हमारे इर्द गिर्द चल रहा हो। फिल्में जब बनती थी तो हकीकत से काफ़ी करीब हुआ करती थी और भले ही वो दौर बहुत पीछे छूट गया हो, लेकिन जब भी हम इसको देखते हैं, पुरानी फिल्मों को देखते हैं, गोल्डन एरा के उन फिल्मों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये दौर अभी बहुत पीछे नहीं रहा, बल्कि हमारे इर्द गिर्द आज भी अगर हम गांवों में जाएं, देहाती क्षेत्रों में जाएं, तो आज भी लगता है कि ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई नज़र आती है। वो बैलों की टोलियां और वो बैलगाड़ी, वो तांगे शायद आज भी कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे जब आप गांवों शहरों से दूर गांवों की तरफ रुख करेंगे। हालांकि सब कुछ बदलता जा रहा है धीरे धीरे, मगर जब आप जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने जो फिल्मों में देखा है अब भी बिल्कुल वैसा ही है। ऐसी ही एक फिल्म थी जो आई थी 1957 में और वो फिल्म थी नया दौर। एक दौर एक गांव को शहर बनने की तरफ किस तरीके से लेकर के जाता है और किस तरीके से वहां पर चीज़ें बदलती जाती है, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं शमशाद बेगम और आशा जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में। आप ये कह सकते हैं कि ये एक कव्वाली है तो भी गलत ना होगा। बहुत ही खूबसूरत ये नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: आशा जी और शमशाद बेगम के गाए इसी आवाज़ के साथ मुझे यानी फेरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं रहूँगा आपके साथ लेकर अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निको

0: उस क्रिस्टो डोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को दोहराया। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की पहली भारत यात्रा शुरू करेंगे। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वे कोलकाता में मदर टेरेसा के कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो के विक्टोरिया मेमोरियल जाने की भी संभावना है। रविवार को श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। सोमवार को वे आगरा और जयपुर की यात्रा करेंगे और फिर मंगलवार सुबह नई दिल्ली लौटेंगे, जहां वे भारत द्वारा आयोजित क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। मंत्री ने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसी बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थ यात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued yesterday during the state visit of the Cyprus president, both leaders urged strong and concerted action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist entities, including those under the 1,267 UNSC Sanctions Committee. They underlined the need for cooperation to counter violent extremism and radicalization, terrorism financing and money laundering, as well as to prevent the exploitation of new and emerging technologies for terrorist purposes and to tackle terrorist recruitment. Both sides also called for eliminating terrorist safe havens and infrastructure, disrupting terrorist networks, and combating the financial

सुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 10 सेकंड।

और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का, और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलुस आदाब। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है जब किसी का साथ सिर्फ साथ नहीं सुकून बन जाए और प्यार हो, तो जिंदगी मुश्किलों में भी मुस्कुराने की वजह दे देती है। और जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर वही होता है जहां प्यार और अपनापन कदम कदम पर साथ हो। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जो जीने का अंदाज ही बदल देते हैं, हर दिन एक नई कहानी लिखती है और प्यार उसे खूबसूरत बना देता है। जब दिल में मोहब्बत और आंखों में उम्मीद हो तो जिंदगी और मौसम में हसीन लगती है। सही इंसान का साथ मिल जाए तो फिर साधारण आम सी जिंदगी भी किसी खूबसूरत गीत जैसी लगती है, जैसे फिल्म उजाला का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो आइए आज के इस बेहद खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं, अरुणिमा के सफर का आगाज करते हैं इसी नगमे के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर बेहद खूबसूरत महफिल अरुणिमा की, और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में एक और बहुत ही खूबसूरत नगमा आपके लिए किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में

किशोर कुमार साहब और मनहर उदास की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये नगमा था फिल्म प्रोफेसर प्यारे लाल से। ये फिल्म आई थी 1981 में और इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा था कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। अरुणिमा की इस महफिल में हम बात जिंदगी से जुड़ी हुई जिंदगी की बातें करते हैं। जिंदगी में भले ही कितनी मुश्किलात आए पर कितनी परेशानियां आए लेकिन जिंदगी को हंसी खुशी के साथ अगर आप प्यार से बढ़ाते हैं तो बस जिंदगी खूबसूरत बन ही जाती है। कहते हैं सही इंसान का साथ मिल जाए तो साधारण सी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत बन जाती है। अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में आपकी ज़िंदगी की भाग दौड़ में अगर कोई मुस्कुराने की वजह बन जाए वही सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, वही सबसे खूबसूरत इंसान बन जाता है। जहाँ प्यार सच्चा हो वहाँ ज़िंदगी हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आती है और इसी उम्मीद के साथ हम भी ज़िंदगी को बड़े ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही चुलबुला सा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म शागिर्द से। ये फिल्म आई थी 1967 में जिसमें बेहद खूबसूरत कलाकारों ने काम किया था और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसके नगमे भी बनाए गए थे। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था जॉय मुखर्जी, आईएस जौहर, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, मदनपुरी, असित सेन, ए के हंगल साहब, शिवराज और शेट्टी वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने। इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब और जोगिंदर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके लिए।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

अगर सुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में जिसका नाम है अरुणिमा। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:33 और 10 सेकेंड। अरुणिमा की बेहद खूबसूरत महफिल जिसमें हम जिंदगी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की, फिल्मों के नगमों की और उन नगमों में बसी जिंदगी की। ऐसा ही एक बहुत ही प्यारा नगमा है जिसमें कहते हैं, दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन जब दिलों का रिश्ता सच्चा हो तो रास्ते खुद ब खुद फिर से मिल जाते हैं। ये दुनिया इस नगमे के मुताबिक बहुत ही छोटी सी है और अनजाने रास्ते हैं और इस उम्मीद में हम जीते हैं कि कहीं ना कहीं फिर हमारी मुलाकात हो जाए। कुछ मुलाकातें छोटी होती हैं पर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं और कुछ लोग बस एक बार मिलकर भी दिल में हमेशा के लिए घर बना लेते हैं। जिंदगी का सफ़र कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर साथ में खूबसूरत यादें हों तो हर मोड़ थोड़ा आसान लगने लगता है। मुझे अच्छा लगता है ये सोचकर कि इस छोटी सी दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे रास्ते फिर से मुस्कुराते हुए मिलेंगे, क्योंकि सच्चे रिश्ते दूरियों से नहीं टूटते, वो बस वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। जैसे हमारा और आपका रिश्ता बेहद गहरा, बेहद प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। तो आप क्या सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में, हमें ज़रूर बताइएगा अपने पैगामात के ज़रिए, अपने ईमेल्स के ज़रिए। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए और जल्दी से आप जहाँ भी इस वक्त सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं काम, आप अपने ईमेल के ज़रिए अपने दिल की बात हम तक पहुँचाइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com fmgoldairdaily@gmail.com। तब तक मैं आपको वही नगमा सुनवाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं। रंगोली फिल्म का यह नगमा किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलेगी, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। बहुत ही छोटा सा ये नगमा और बहुत ही खूबसूरत बातें। कहते हैं कि बातें कम अल्फाज में भी बहुत कुछ कह जाती हैं, छोटी सी लाइनों में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती है। ऐसा ही ये नगमा था कि छोटी सी ये दुनिया है, पहचाने रास्ते हैं, कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे, फिर पूछेंगे हालचाल क्या है, कैसे हैं और अब कैसे रहें। ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। इसी तरीके से कुछ रिश्ते शोर नहीं करते, बस चुपचाप दिल को सुकून देते हैं। जैसे किसी अपने का हाथ थाम कर ये यकीन होना कि अब हर मुश्किल में कोई तो हमारे साथ खड़ा है। तुम्हारा साथ किसी खूबसूरत दुआ जैसा है जो हर दिन थोड़ा और हसीन बना देता है। अब खुशियां बड़ी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारे साथ छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती है, और ऐसा तब होता है जब आपका अपना कोई आपके दिल के बेहद करीब होता है। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन सबसे खूबसूरत एहसास यही दिया कि जब कोई दिल से अपना बन जाए तो हर मौसम, हर रास्ता, हर दिन, हर वक्त बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है, बहुत ही प्यारा लगने लगता है। बिल्कुल इस नगमे की तरह जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए फिल्म हनीमून से। ये फिल्म आई थी 1973 में और उसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है, मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में, जिसको बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने और गीत लिखे हैं योगेश ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। और अरुणिमा में बातें जिंदगी की, और जिंदगी में तमाम मुश्किलात के बावजूद किस तरीके से इसको आगे बढ़ाई जाए उसकी, ऐसी ही बातें जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है जब हमारा कोई अपना हमारे साथ होता है। लेकिन कहते हैं जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं होती, जिंदगी वो होती है जहाँ किसी की मुस्कान में अपनी खुशी मिलने लगे, जब कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ हर मुश्किल हल्की लगने लगे और हर खुशी दोगुनी। तो समझ लेना चाहिए कि जिंदगी ने आपको सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया है। प्यार सिर्फ किसी को पा लेने का नाम नहीं, बल्कि किसी के साथ हर दिन को बेहतर बनाने का एहसास है, जहां उम्मीद हो, सम्मान हो और एक दूसरे के लिए प्यार हो और साथ निभाने का वो जज्बा हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर आप ना मिलते तो शायद जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। अब लगता है सच्चा जीना वही है जहां दिल में प्यार हो और साथ में कोई अपना जो हर दिन को जीने की नई वजह दे जाए। बिल्कुल इस अगले नगमे की तरह जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, 1971 में आई फिल्म अधिकार। ये बेहद खूबसूरत फिल्म जिसके गीतों को लिखा है रमेश पंत ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आर डी बर्मन साहब ने। उसी फिल्म का यह नगमा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपके लिए।
1: ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो

0: जोड़ जाएंगे, हाय हाय बनेंगे किसी के होके जाएंगे, बनेंगे किसी के होके जाएंगे।
1: मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये नगमा था फिल्म लाट साहब से। इसी नगमे के साथ मुझे यानी फ़िरोज़ को अब दीजिए इजाज़त। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूँगा लेकर भोर सुहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडिलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: इस बीच दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपने शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज से अपनी 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंचेंगे। श्री रूबियो का नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का भी कार्यक्रम है। वे कोलकाता में मदर टेरेसा की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके अलावा श्री रूबियो का विक्टोरिया मेमोरियल जाने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो रविवार को विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने सोशल मीडिया के जरिए शेयर बाजार में पंप एंड डंप रैकेट चलाने के आरोप में कई अपंजीकृत फाइन इन्फ्लुएंसर और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अंतरिम आदेश में जारी बाजार नियामक ने कहा है कि इन संचालकों ने स्मॉल और मिड कैप शेयरों को खरीदा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुझाव साझा करके कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और बाद में मुनाफे पर शेयर बेच दिए। इससे खुदरा निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। सेबी ने कहा कि आरोपियों ने शेयर की कीमतों में हेरफेर करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ नागरिकों तक सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित हेमकुंड साहिब के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच पंच प्यारों के नेतृत्व में तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गोविंद घाट से घांघरिया के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्रा दल में 5,000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो में चल रहे इबोला के मौजूदा संक्रमण से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को अत्यंत उच्च कर दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदहनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जोखिम बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 82 मामले और 7 मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन संक्रमण के इससे कहीं अधिक व्यापक होने की संभावना है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today.
3: Rozgar Mela is a step towards fulfillment of the Prime Minister's commitment to accord highest priority to employment generation. The Rozgar Mela is playing a significant role in providing meaningful opportunities to the youth for their empowerment and participation in nation building. Since its inception, around 12 lakh recruitment letters have been issued through 18 Rozgar Melas organized across the country. The 19th Rozgar Mela will be held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including Ministries of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. With Deependra, this is Anand Kumar for Akashvani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidis have called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and for the early finalization adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. In a joint statement issued after the talks between the two leaders in New Delhi yesterday, both sides urged strong and coordinated action against all UN and EU-designated terrorists and terrorist organizations, including those listed under the 1267 UN Security Council Sanctions Committee.
1: Aaj humne cyber security, maritime security aur counter-terrorism sahyog ko bhi aur majboot karne ka nirnay liya hai. इतना ही नहीं हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे.
2: The two sides also agreed to deepen defense and security cooperation, including collaboration between their defense industries with special focus on cybersecurity and emerging technologies. In this context, they welcome the signing of an MOU between the Cyprus Defence and Space Industries Cluster and the Society of Indian Defence Manufacturers. U.S. Secretary of State Marco Rubio will arrive in Kolkata today on a four-day visit to India. This will be his maiden visit to India. During his stay in Kolkata, Mr. Rubio is expected to pay respects at Mother Teresa's cemetery. He is also likely to visit the Victoria Memorial. Later, the U.S. Secretary of State will arrive in New Delhi and call on Prime Minister Narendra Modi. Tomorrow, Mr. Rubio will hold talk to the External Affairs Minister, S. Jayashankar, in National Capital. He will also attend the U.S. Embassy's Independence Day celebrations. On Monday, Mr. Rubio is scheduled to visit Agra and Jaipur before returning to New Delhi to attend the Quad Foreign Ministers meeting on Tuesday, hosted by India. Central Bureau of Investigation has arrested another woman from Pune in connection with the NEET examination paper leak case. The accused has been identified as Manisha Havaldar, who had been appointed as an expert by the National Testing Agency, NTA. So far, 11 accused have been arrested from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar in connection with the case. The CBI has conducted raids at several locations across the country and seized documents related to the crime, along with laptops, bank account details and mobile phones. The India Meteorological Department, IMD, has issued red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbha today. IMD has also issued orange colour warning for heat wave conditions over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, Rajasthan, Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and Odisha today. Similar conditions will prevail over coastal Andhra Pradesh, Telangana, West Madhya Pradesh and West Uttar Pradesh for the day. For today, the maximum temperature in Delhi is expected to be around 45 degrees Celsius, while the minimum temperature is likely to hover near 27 degrees Celsius. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad, batting first. After winning the toss, Sunrisers Hyderabad boosted a massive 255 for 4 in 20 overs. Today, Lucknow Supergiants will face Punjab Kings in Lucknow at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

सुने दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:11 और 6 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका अपना अजीज दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार खुलूस आदाब और दोस्तों आज हम एक नई सुबह में कदम बढ़ा चुके हैं एक नए दिन की शुरुआत करने ही वाले हैं क्योंकि आज हम एक नए दिन में कदम जैसे मैंने पहले बताया रख चुके हैं तो हर काम की शुरुआत हम खुदा के नाम से उस ईश्वर के नाम से करते हैं हम जो भी नया काम करते हैं नए दिन की शुरुआत हम करते हैं तो उसी ईश्वर के नाम से करते हैं उसी भगवान के नाम से करते हैं उसी खुदा के नाम से करते हैं क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है और वही सब कुछ करने वाला है कहते हैं कि खुदा की रहमत अक्सर खामोशी में मिलती है बस दिल में यकीन होना चाहिए और जब इंसान थक जाता है तब उस ईश्वर को याद करता है और वही ईश्वर आपको रास्ता दिखाता है ईश्वर देर करता है मगर बेहतर देने के लिए करता है हर दुआ तुरंत पूरी नहीं होती कुछ दुआओं का खुदा सही वक्त पर जवाब देता है सही वक्त मुकर्रर कर रखा है इसीलिए ईश्वर की पूजा करते हैं प्रार्थना करते हैं और तभी हम कोई नया काम करते हैं इसीलिए हम भी आज के इस नए दिन की शुरुआत उसी खुदा उसी ईश्वर के नाम से करेंगे फिल्म पवित्र पापी के इस बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब की